0: सुनाओ। एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भाई पुग्छ, हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी। एलजी लाइफ गुड।
1: दैनिक रू 197 में ₹50,00,000 को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
3: नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र म श्रीकृष्ण शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट।
4: नेपाली कांग्रेस

0: अनि त्यसपछि के भयो त बाबा?
1: त्यसपछि के भयो फेरि पछि भनौला है बालक।
2: भोलि कैलाश पति शिव पार्वती की, भोलि बम्बई जाने।